अल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम अपने कमालात और शानें भी लोगों के सामने बयान फरमाते थे। आज ज़माना बड़ा अजीब और लोग ख़ास तौर पर बड़े अजीब हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम के मिलाद शरीफ की, हुजूर की शानों की, हुजूर के कमालात की बात की जाए तो लोग कहते हैं, क्या क़ुरान पाक में इन चीज़ों का ज़िक्र मौजूद है? और जब हम क़ुरान पाक की कई आयात अहल सुन्नत के उलमा, अहल सुन्नत का तालीम और दरस देने वाले लोग जब अपने नबी की अजमतें और शानें क़ुरान पाक से पढ़कर सुनाते हैं तो फिर लोग कहते हैं, जनाब क्या नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने ऐसा काम किया था, ऐसा अपना कमालात और शाने बयान फरमाई थी? तो मेरे मुसलमान भाइयों, याद रखो, अल्लाह ताला के नबी और रसूल वही करते और हुक्म देते हैं जिसका ज़िक्र क़ुरान पाक में है, और नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने कई मर्तबा सहाबा इकराम के सामने अपनी अजमत और अपनी शान का ज़िक्र भी फरमाया। यही वजह थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने एक मौका पर सहाबा इकराम से फरमाया कि अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी ज़िंदा होते, इस दुनिया में ज़हरी तौर पर मौजूद होते, तो उन्हें भी मेरी ही इत्तबा और पैरवी करनी पड़ती। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे तो वो भी मेरी ही शरीयत पर अमल करेंगे, हत्ता के नमाज भी नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के उम्मती सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ेंगे, ताकि लोगों को ये गलत फहमी न हो कि वो अपनी नबुव्वत और शरीयत पर अमल कराने के लिए आए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ख़ुद तशरीफ़ लाएंगे तो वो मुसलमानों की मदद करेंगे, और नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की शरीयत को दोबारा ज़िंदा फरमाएंगे कि ख़ुद भी उसी पर अमल करेंगे और लोगों को भी हुजूर की सुन्नत और शरीयत पर अमल करने की दावत देंगे। आप ख़ुद देखें और सोचें कि अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को कितना बड़ा मकाम, कितनी बड़ी इज़्ज़त और अज़मत अता फरमाई है। यकीनन वो लोग जो इस गए गुज़रे दौर में भी नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के ज़िक्र से, हुजूर की नात से, हुजूर की तारीफ़ से महाफ़िल सजाते हैं, लोगों को दावत देते हैं, बुलाते हैं, क़ुरान पाक की तिलावत, नात और हुजूर के कमालात, हुजूर की अजमत और हुजूर की शान बयान की जाती है, फिर लंगर शरीफ का अहतमाम होता है, अल्लाह ताला की बारगाह में हुजूर के सदक़े और वसीले से दुआएं मांगी जाती हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़े जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ऐसी पाक महफ़लों को जो क़ुरान व हदीस के ऐन मुताबिक हों, अल्लाह ताला के हुक्म के ऐन मुताबिक हों, ऐसी महफ़लों में हाज़िर होना, ऐसी महफ़िल में बैठना, ऐसी महफ़िल के लिए कुछ भी मदद और तआवुन करना, ये दुनिया में हज़ारों हज़ारों बरकतों और अल्लाह ताला की रज़ा का ज़रिया और सबब है। मैं ऐसी महफ़िल का कायल हूँ, ऐसी महफ़िल की दावत दे रहा हूँ जो शरीयत के मुताबिक हो
قرآن و حدیث کے تعلیمات کے مطابق ہو، لیکن ایسی محفل جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہو، ایسی محفل جس میں شریعت پر پابندی نہ کی جائے، ایسی محفل جس کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیمات کا خیال نہ رکھا جائے، تو یاد رکھیں گناہ ہے اور جہنم میں لے جانے والے کام ہے۔ بعد حضرات ایسی محفل کو تو فتوے لگا دیتے ہیں کہ یہ گناہ اور حرام ہے، جس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو، لیکن شادی بیاہ یا باقی ایسی تقریبات میں وہ مزے لے کر بیٹھتے ہیں۔ معزز سامعین، یاد رکھیں شریعت ہر دور میں، ہر مہینے میں اور ہر وقت مسلمانوں کو عمل کرنے کا حکم دیتی ہے۔ میری یہ دعا اور میری یہ التجا ہے کہ ہم مسلمان صرف ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرنے کے بجائے، ایک دوسرے کو کم یا زیادہ کرنے کے بجائے، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں، نبی پاک کی سنت اور حدیث کی تعلیمات پر عمل کریں، اور ایسی محافل سجائیں کہ جس سے اللہ تعالی اور اس کا رسول راضی ہو، اور شریعت کا خلاف کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام کسی بھی محافل میں نہ کریں، تاکہ کل قبر اور آخرت میں ہم اللہ تعالی کی بارگاہ میں سرخرو اور کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، حضور کی تعلیمات پر عمل اور دنیا میں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے اسلام کی عظمت اور شان ظاہر ہو، پتہ چلے کہ یہ مسلمان نبی پاک کا امتی اور غلام ہے، اور ایسے کاموں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے جس کی وجہ سے لوگ یہ کہیں کہ یہ مسلمان ہو کر کتنے برے کام کر رہا ہے، کہ ہمارے عمل، ہمارے کردار کی وجہ سے اسلام پر انگلی اٹھائی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی خدمت کے قابل بنائے، ہماری کمزوریوں کو دور فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آپس میں اتفاق محبت عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔